साचा सुन नो पटाई हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारा लाए भावनी इकना दसवा द्वार दिखाया तय अनेक रूप नौ नाव निद तिस्ता अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यार है जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया एहो साचा सोहिला साचा कर गावो गावो ता सोहिला कर साचा जिथे सदा सच आवे सुचो त्यावे जा तुद पावे गुरमुख जिना मुजावे एहो सच सबना का खसम है जिस पक्ष सो जन पावे कह नानक सच सोहिला सच कर गावे आनंद सुनो वड पागी वो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन अद तूरे राम कली साध के ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत विचलता लोए जियो गुर शब्द समावे आवर न जाना कोई जियो आवरो न जाना शब्द गुर का एक नाम त्यावे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा राम नाम समाया जग अमर अटालिया तोल ठाकुर भगत हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जने केरी हर दियो नाम निरंजनो अंत चलदया होए बेली जमदूत काल निकंजनो सतगुरु की बेनती पाए हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह सावासियो मेरे सिख सुनो पुत भाईओ मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे सावासियो भगत सतगुर पुरख सोए जिस हर प्रभ भाणा पावे आनंद आनंद वजे वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परिवार मेरा मन वेको कर निरजासियो तुर लिखिया प्रवाणा फिरा नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर भाणा अपना बह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल न पाया मित पैज है मित बिगस है जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पहनावे सतगुरु पर तक होंदा वैराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सदयो हर हर कथा पढ़ै प्राण जियो हर कथा पढ़िया हर नाम सुनिया बेवान हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुरु बोलिया हर मिलिया पुरख सजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन ले रजाय जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाई जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिते गुर आप रखिया कोई कर बकीली निवै नाही फिर सतगुरु आन निवाया हर गुरह भाणा दी वड्याई तुर लिखिया लेकर जाय जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो राम कली महला पंजवा छंते के ओंकार सतगुर प्रसाद
ਸਾਜਨ

शांति प्रभ बिपत निवारण तिस्वनिवार न कोई जियो सदा सदा हर सिमरी है जल तल मही अल सोई जियो जल तल मही अल पूर राया एक निमक मनो न विसराय गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीसरा कर सेव सेवक दिन सराणी तिस भाव सोए जियो बल जाय नानक सुखा दाते प्रगास मंथन होय जियो श्लोक हर सिमरत मन तन सुखी बिनसी द्वितीया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच संत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो हर गुणानंद गाय प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो प्रतपाल अच्युत पुरख एको तिसा सिंह रंग लागा कर चरण मस्तक मेल लीने सदा अंदिन जागा जियो पिंड ग्रह तान तिसका तन जोवन धन माल जियो सत सदा वल जाय नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो स्लो

अनिशंत सो स्वामी प्रभ रखो अंचल ताका लाग जियो भज साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो एक ओट की जय जियो दीजा आसिक धरणी तरह साध संगे अर नाम रंगे संसार सागर सतरह जन्म मरण बेकार छूटे फिर न लागे दाग जियो बाल जाए नानक पुरख पूरन तिर जाका सुहाग जियो श्लोक धर्म अर्थ अर काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया मात चंत सगल इच्छ मेरी पुनिया मिला निरंजन राय जियो आनंद पाया वड पागियो ग्रह प्रगटे प्रभ आय जियो ग्रह लाल आय पूर्व कुमाय ताकि उपमा क्या गणा बेअंत पूर्ण सुख सहदाता कावन रसना गुण प्रणाया पे मिलाय गया कंठ लाय तिस्मना नहीं जाय जियो बल जाय नानक सदा करते समय रह समाय जियो राग राम कली महला पंजमा रन झुंझुनड़ा गौ सकी हर एक ते आवो सतगुर तुम सेव सकी मन चंदड़ा फल पाओ राम कली महला पंजमा रुति श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म बचो साधा तुर आप निवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर संत जस गावो उठ पा गियो कर कृपा भगवंत जियो रुते माहे मूरत घड़ी गुण उचरत स्वभावंत जियो गुण रंग राते धन ते जन जिनी एक मन त्या सफल जन्म पाया तिनका जिनी सो प्रपाया पुन दाना तुल किरार सर पापा जियो बनवंत नानक सिमर जीवन जन्म मरण रंत जियो श्लोक उदम आगमा गोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उद्भाव सि नानक नाम आधार संत संसाजन परो स्वामी सिमरन अंत सुके तैयार तिया नानक जप भगवंत संत रुत सरस बसंत मां चेत वैसाख सुखमास जियो हर जियो नह मिलया मौलया मंतन सा जियो

इच्छा तब चरणन मंद रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख्य सभै कर तारा। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब बैरन कौ आ संघरिय। पूर्ण होए हमारी आशा, तौर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। तू जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू करे और अच्छा। राख ले हो मुह राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताह हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो भद कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान। जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तर्त तब दे अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन शिष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीन तुन पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आज जुगात स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण काता। जे अस्तु तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जीवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार है, ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताह सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला।
कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा छ सके न

करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरण सुभराता, किल विक सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता, श्री अस्तुज भये दयाला, पूरण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई, अड़िल सुने गंग जो याह सुरस न पावई, सुने मूड चितलाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट नति नर के रह, हो जो या की एक बार चौपई को कह, चौपई संबत सत्रह सहस पणिज, अर्ध सहस फुण तीन कहिज, भाद्रों सुदी अष्टमी रववारा, तीर स्तुद्रव ग्रंथ सुधारा, इत श्री चरित्रोपख्यान त्रिया चरित्रे मंत्री पूप संवादे, 405 चरित्र समापत, मस्त सब मस्त अफजून दोहरा, दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार, आप हाथ दय राख मोहे मन क्रम बचन विचार, चौपई मैना गणेश प्रथम बनाऊ, किसन बिसन कब

अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देग तेग जग में दो चले राख आप मोहे और ना दल तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवास आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा पापे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दया थे उबारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता विधनाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कब लेहो सुधारो कवियो बाच दोहरा जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहे ओ जग महा है जो ते

जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहै। दोहरा जब आयस प्रभ को भयो जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए। कवे बाच दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। पंत चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं।

कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रवसस क्रूर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत स्वर्ग बास रघुवर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो ए कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट न आवे विष्णु भगत की ए फल होई आद ब्याद छह सके न कोई संबत सत्रह सहस पचामन हाड़ बदी प्रथम सुख दामन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल परी लौ लेहो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तर स्तुद्रो तीर तरंग श्री भगवत पूरण कियो रघुबर कथा प्रसंग साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जान्यो श्री स्पान।

तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो ना।

राम नाम औखद दियाय काल विलाई रहाउ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पहे सहाय। सलोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना होना तू नह छुटह निक न जाई हो दूत। सलोक महला पंजवा मन मह चितव चितवनी उत्म करो उठ नीत, हर कीर्तन का हरो हर देहो नानक के मीत। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ताखी है करते का होए बिचारो, तितर गाव हो सोहिला सिवरे हो सिरजन हारो। तुम गाव हो मेरे निर्भव का सोहिला, हवारी जित सोहिला सदा सुख होए रहाओ। नित नित

संबत साहा लिखिया मिल कृपा बहु तेल देहो सज्जना सी सड़िया जहो वै साहस्यो मेल कर करे हो पहुचा सदड़े नित पवाना सदन हारा सिमरिया नानक से देह अवन राग आसा महला पह

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरमो पख सार असंख

असंख मूरखंद कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल पख खाए असंख निंद

ना जोगी जाने रुत महू न कोई जा करता सिठी को साजे आपे जाने सोए किव करे अखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानु काकन सबको आके एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी

बंद कलासी भाने होए हो राख न सके कोए जे को खाए काकण पाए हो जाने जे तिया मुखाए आपे जाने आपे दे आ किसे पे के जिसनु बक्से सिर्फ सा।

चालते स्वे जीय जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच प्रमाण नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड कायो धर्म ज्ञान खंड काय आखो कर्म केते पवन पानी वैसंतर केते कान महेश केते बरमे घाट कड़िए रूप रंग के वेश केतियां करम भूमि मेर केते केते धूप देस केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाद केते केते देवी वेश केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरिंद केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाथ विनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त कढ़िए बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथियां ना जाए जे को कहे पिछे पछताए तिथे कढ़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कढ़िए सुरस

नगत ने जाहि ना ओ हो मरि न ठाके जाहि जिनके राम से मन माहि तेते भगत वसे के लोक रे नन सच्चा मन सोए सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल तेते खंड मंडल वर पंड

मैं के कर्मं करी, मैं के सर्वं कली है, के सर्वं दली है, के सर्वत्र माने है, के सर्वत्र दानी है, के सर्वत्र गौन है, के सर्वत्र पौन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र भेष है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र भेष है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र शोक है, के सर्वत्र भोग है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र भेष है, के सर्वत्र मानी है, सदैव प्रधानी है, के सर्वत्र जापे है, के सर्वत्र थापे है, के सर्वत्र पाने, के सर्वत्र माने, के सर्वत्र इंद्र

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद न के फिर जंत विस्माद पान विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड बिडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद सद लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग

तीर्थ नावे अर्चा पूजा कर बस बहकार जोगी सुन त्यावन जेत्या लख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सती अमर संतोख अपजय देने कै विचार दे दे मंगे सह सगुना सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खराबा बेकार एक हुंदा खाए चलया था इतना भिकाई कार जल था जिया पुरिया लोआ आकार आया कार ओए जे अखिस तुहां जाने।

पड़ गड्डी लदी है पड़ भरी है साथ पड़ बेड़ी पाई है पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेते आरजा पड़ी है जेते सास।

सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे।

गाव है खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तहारे से तुद नो गाव है जो तुद पहावना रते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई, कर कर वेखा कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई, सो पात साहु साहा पात साहिब नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करह बेपूता, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती।

जुग जुग एको वेस एक दूजी बहु लख हो हे लख हो है लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश ए तो राहे पत पबड़िया चढ़िया हुए एकीस

0: कैसे मन तरहेंगा रे, संसार सागर बिखै को मना। क्योंकि रोजाना पढ़ते हाँ, तित सरवरड़े पहिले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चल है। ये ऐसा पानी है, अग दा पानी, जिदे विच पैर रखिया, ज्यों ज्यों पैर पुटन दा यतन करते हाँ, होर खुबजा है, होर गर्क हुंदा है। पंकज मोह, मोह दा पंकज है, मोह दा चिकड़ है, जिदे विचों निकलना बहुत औखा है, बहुत मुमकिन नहीं। पंकज मोह पग नहीं चल है, एक पैर भी तलिया नहीं जाता। गुरु के चरणों का आसरा ले लीए, जपण वालों का आसरा ले लीए, संगत कर लीए, जिदा सदका साडा पार उतारा हो सकता है। इनिया सेवावां प्रवान करनिया भुला खेमा। अगला प्रोग्राम प्यासा सरण करो, दीसरे दासरिया नूं सीसां देंदे बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: गुरु प्यारी साध संगत जी, धन्नवादी हाँ गुरु घर दी हजूरी रागी जथे भाई बरहाम सिंह जी दे, जिन्होंने संगतां नूं शब्द कीर्तन सरवण कराया। अज दे लंगरां दीआं समावां मलेशिया दी समूह संगतां वल्लों, बाबा सोहन सिंह जी मलाके वाले मलेशिया वालिआं दे याद विच परसों रोज तो अखंड पाठ साहब आरंभ कराए सन, अज उन्हां दे भोग पए ने। अज लंगरां दी समावां सारे परिवार रल मिल के कर रहे हैं। उन्हों का गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु घर विखे सवा नवा रहे हैं। बाकी जो पिछले सैचरडे नगर कीर्तन 13वां नगर कीर्तन कैंट शोबेर विखे सेंटर विखे होया सी, उसके संबंध में जिन्हां प्राणियां ने, जिन्हां बीबिया ने, भैणां ने, बच्चियां ने साढ़े नाल सवावां नवाईआं ने, उन्होंने गुरु घर के सरोप बख्शिश अगले ऐतवार 12 बजे दिते जाएंगे। सारू बेनती है भी आप अभी कल भी करा भी पहुँचने की कृपालता करनी 12 बजे, तो उन्होंने गुरु की दिती बख्शिश सरोपों लैन की कृपालता करनी। बाकी साढ़े ट्रक भीर वालों 84 के घलूकार इस संबंध में 5 तरीक न खंड पाठ साहब आरंभ हो, 7 तरीक भोग पैणगे। इन्हों परिवारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हर साल सवावान नभाते हैं। साढ़े कोल जो यूके तो जगजीत सिंह जोरावर सिंह जी, जो उन्हों का सिख पेरेंट्स कोर्स है, वो संबंध में 12 बजे अपने को इतने पहुँचे। 12 बजे तो 1:30 बजे तक संगतान वो अपना जो भी उन्हों का कोर्स है वो बारे जानकारी देंगे। समूह संगत को बेनती है आप लंगर पानी छक के द्वार बैठ के उन्होंने उगे विचार सरवण करिए। परिवारों को जोड़न वास्ते बहुत ही वधिया उन्हों का जो कोर्स है, कल उन्होंने सवेरे 10 बजे तो लैके 6:30 बजे तक लाया सी, जिस वे 200 प्राणी पहुँचा। पर सानू लाहा बद लेना चाहिए सी, क्योंकि इन्हां प्रोग्रामां ते खर्चा काफ़ी संगत है, पैसा आ ते खर्चा काफ़ी आउंदा है। इस करके संगतां नूं बेदी आपां बाद चार पहुँच के इस चीज़ां का लाहा लै करिए, जाके कमेटी इस तरह के उपराले होर भी कर सके। आओ हुण अरिंदरजीत सिंह एक शब्द साहब जी नूं सरवण कराउणगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।
2: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सतसंगत जी, आप जी वडभागे हो, समूह साध संगत और जिन्नी भी मलेशिया की संगत है, बड़े वडभागे हैं जिन्हां दे उपर ऐसे महान पुरशां की मेहरमत हुई है कि उन्हां दी याद दे विच 54वीं बरसी जो सरबत संगत ने 3 दिन तो बड़े ही अदब ते सत्कार दे नाल बड़ियां सेवावां कीतियां, एक गुरु दी कृपा है। सो मेरे कोले तकरीबन समा बहुत सीमित है, सो आपां इन्नियां विचारां नहीं कर सकते, पर मैं अपने एक मन दे अंदर एक विचार है आप जी नाल जरूर सांझा करांगा कि संत बाबा सोहन सिंह जी मलाका मलेशिया वाले कि ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਜੌਹਰ ਬਾਰੂ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੌਹਰ ਬਾਰੂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਵਿਊ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਾਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ

0: सेवक जान माना परताख गुरु निस्तारे
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सूही महला पंजवा जाके

0: कौन न मुगा कौन न मरसी दे महाबाग अनुसार गुरपुर वासी माता जसपाल कौर जी कुछ दिन पहला परिवार को सदीवी विछुड़ा दे गए। इन्हां दी आत्मक कल्याण वास्ते परिवार वालों सहज पाठ प्रारंभ करवाए गए। हुण उन्हां दी याद विच भोग पैणगे। इस तो पहला गुरबाणी दे कीर्तन होए ने गुरु पातशाह बख्शिश करन विछड़ी आत्म नावा गम दे गेट ते बचाउंदिआं परिवार नूं पाणा मंदा बल बख्शन जी होईआं भुल्लां बख्श देणीआं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹਾ ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ